नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

0: दिल बोले तो
1: हार्ट हार्ट
2: हमा यार सौदा सौदा
1: ओहो
3: दोनों डील करा सील
1: टाइट वेरी टाइट।

0: Gorka Radio. Gorka Radio.
1: Lahai gaule ho. Hello, Bausi Hajur. Lo u to daana thumko milai dinu ta thumko. रोपार लगा रहे उनसे के
2: इस पाली तो छोरी माइटी मिले रा एकदम रवाई लगाने पर था और कुछ साल क्यों क्यों ये साइली ये माइली छिट्टा मुंडा ना छिट्टा मुंडी